कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. Ki duniya, ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir udne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूएसपी की दुनिया एफएम 92.6 आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूएसपी की दुनिया।

0: मुजफ्फर को महाबत अपनी जिस कदर इसके मुकद्दर में है सब मिल जाए।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

عرش خدا پر نبی کی یاد چلتی ہے سانس تھا۔

कोई कारवा नहीं चाहिए, ये तेरा मुजफ्फर।

थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, ये बादशाह जो मदीना में है, तुम उसकी आरजू कर रही हो। सामईन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे में आप सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वक्फे के बाद नशिस्त का यहीं से आगाज करेंगे।

0: लेकर लोग बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। उसे ये देख कर के अब उनके अंदर जाहिलियत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत और इज्तमाईयत ने ले ली है और उनकी दरीना शकर रंजी का खात्मा हो गया है, सख्त रंज हुआ। कहने लगा, ओ इस दयार में बनू कबीले के अशराफ मुत्तहिद हो गए हैं, बाखुदा इन अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुजर नहीं। चुनाचे उसने एक नौजवान यहूदी को जो उसके साथ था हुक्म दिया कि इनकी मजालिस में जाए और उनके साथ बैठकर फिर जंगे बुआस और उसके पहले के हालात का जिक्र करे और इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशार कहे गए हैं कुछ उनमें से सुनाए। इस यहूदी ने ऐसा ही किया। इसके नतीजे में ओसो खजरज में तू तू मैं शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर फखर जताने लगे, हत्ता कि दोनों कबीलों के एक एक आदमी घुटनों के बल बैठकर रद्दो कदा शुरू कर दी। फिर एक ने अपने मदे मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम उस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। मकसद ये था कि हम इस बहमी जंगी के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी है। इस पर दोनों फरीकों को ताव आ गया और बोले, चलो हम तैयार हैं, हर्रा में मुकाबला होगा। और लोग हथियार लेकर हर्रा की तरफ निकल पड़े। करीब था कि खून रेज जंग हो जाती, लेकिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुहाजरीन सहाबा को हमरा लेकर झट उनके पास पहुंचे और फरमाया, ऐ मुसलमानों की जमात, अल्लाह क्या मेरे रहते हुए जाहिलियत की पुकार और वो भी इसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा चुका है और इसके जरिए तुमसे जाहिलियत का मामला काट कर और तुम्हें कुफर से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनकर सहाबा को एहसास हुआ कि उनकी हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की एक चाल थी। चुनाचे वो रोने लगे और ओसो खजरज के लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतात व शार फरमाबरदार बनकर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन शाशिश बिन कैस की अय्यारी की आग बुझा दी थी। यह है एक नमूना उन हंगामों और इस्तराब का जिन्हें यहूद मुसलमानों की सफों में बपा करने की कोशिश करते रहते थे, और यह है एक मिसाल उस रोड़े की कि जिसे यहूद इस्लामी दावत की राह में अटकाते रहते थे। इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बना रखे थे। वो झूठे प्रोपेगेंडे करते थे, सुबह मुसलमान होकर शाम को फिर काफिर हो जाते थे, ताकि कमजोर और सादा लोग किस्म के लोगों के दिलों में शको शुबह के बीज बो सकें। किसी के साथ माली ताल्लुक होता और वो मुसलमान हो जाता तो इस पर मईशत की राहें तंग कर देते। चुनाचे अगर उसके जिम्मे कुछ बकाया होता तो सुबह शाम तकाजे करते। अगर खुद इस मुसलमान का कुछ बकाया उन पर होता तो उसे अदा ना करते बल्कि बातिल तरीके पर खा जाते और कहते कि तुम्हारा कर्ज तो तुम्हारे ऊपर उस वक्त था जब तुम अपने आबाई दीन पर थे, लेकिन अब जबकि तुमने अपना दीन बदल दिया है तो अब हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। वाज़े रहे कि यहूद ने ये सारी हरकतें बदर से पहले ही शुरू कर दी थी और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी शुरू कर दी थी जो इन्होंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा था। इधर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुं का ये हाल था कि वो इन यहूद की हिदायत याबी की उम्मीद में उन सारी बातों पर सबर करते जा रहे थे। इसके अलावा ये भी मतलूब था कि इस इलाके में अमन व सलामती का माहौल बरकरार रहे। सामईन, वक्त की कमी के बायस हमें अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
1: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
2: سيد الأولين والآخرين
1: FM 92.6.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: एक नई पहचान,
4: एक नई लगन।
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया।
4: यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।
5: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के फैकल्टी के बारे में, एकेडेमिया, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग, मीडिया ट्रेंड्स, फिल्म मेकिंग, PR, एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इस जैसे बहुत से अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान खास वो शख्सियत हैं जो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है बल्कि एक फिल्म मेकर हैं और फिल्म के स्टूडेंट्स के मेंटोर हैं। उनकी इंस्पिरेशन है और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के बेस्ट टीचर अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है और आपने बहुत सारी कहानियों को कैमरे के जरिए जिंदा किया। सो मैं किसी और की नहीं बल्कि अपने और हम सबके फेवरेट सर कामरान भट्ट की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।
6: वालेकुम सलाम मरियम, कैसे हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
6: अल्लाह का शुक्र।
5: अच्छा सर, हम अगर अपनी बात का आगाज करते हैं तो मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी कि आपने फिल्म मेकिंग का स्टार्ट और आपने इस कैरियर को चूज कैसे किया? बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चे हमेशा इस चीज पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि दे वॉन्ट टू बी इंजीनियर, डॉक्टर, और उनको पता भी नहीं होता कि व्हाट दे वांट टू बी। आपने कैसे सेलेक्ट किया कि आई वांट टू बी अ मीडिया पर्सन और मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है और यहीं पे अपने करियर को स्टार्ट करना है?
6: इफ वी टू एक्सप्लोर के हाउ आई डिसाइडेड दिस करियर, तो मरियम ऐसा है कि मेरी जो पहले घर का थोड़ा सा माहौल जो उसको देखते हैं वो बड़ा काउंट करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, उसका थॉट प्रोसेस में। तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा हमारे घर में, बुक्स को पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज को। मेरी बहन छोटी जो थी, मेरे से तो बड़ी हैं लेकिन तीनों बहनों में जो छोटी थी उनके साथ मेरी ज़्यादा क्योंकि रहा दोस्ती रही, तो शी वॉज इन टू लिटरेचर। तो मुझे याद है वो मुझे यहाँ पे एक लाहौर में पुरानी एक बुक स्टोर होती थी फिर वो सन्स, तो वहाँ ले जाया करती थी और आई यूज टू बाय बुक्स फ्रॉम देयर। तो लिटरेचर का था कह के जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता था, वालिद साहब कहा करते थे कि इसको पढ़ें, रोज़ अखबार आना, और वो एक माहौल था। फिर बुक शेल्फ थी कुछ, तो वो छोटा सा बच्चा जब देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ें घर में हैं, तो घर के माहौल से। तो लिटरेचर का ताल्लुक शुरू से था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी तरह से लोअर मिडिल क्लास में जिस तरह से होता है कि या तो आप इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं, ऊपर से आपके बड़े बहन भाई भी इन्हीं प्रोफेशंस में हो, तो सिंस आई एम द यंगेस्ट वन, तो वो उन्होंने फिर मुझे भी इंजीनियरिंग की तरफ से, सो आई डिड माई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जब हम पास आउट हुए 2003 में तो तभी कुछ जॉब्स की इंजीनियरिंग रिलेटेड, लेकिन तभी जियो लाहौर स्टार्ट हो रहा था, जियो की ट्रांसमिशन लाहौर से स्टार्ट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड देयर डिपार्टमेंट, इंफरटेनमेंट मेनली उस वक्त डिपार्टमेंट था, और उन्होंने एक डिप्लोमा ऑफर किया, और उसके लिए ये था कि इट वाज अ 6 मंथ डिप्लोमा और यू हैव टू पे फॉर दैट, और अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं और बाद में पैस आउट करते हैं तो उसमें ये था कि हो सकता है कि आपको फिर जॉब भी ऑफर की जाए।
5: अच्छा।
6: तो शुरू से एप्टीट्यूड क्योंकि था फिल्म मेकिंग के हवाले से, टीवी के हवाले से, फिर थिएटर का कुछ अजोका के साथ कुछ परफॉर्मेंसेज और वो की, तो व्हेन आई गिव इंटरव्यू टू अब्दुल रऊफ साहब, उनका बड़ा मजे का एक जबरदस्त किस्म का एक 50 मिनट प्रोग्राम भी आता था किसी दौर में जियो पे, तो उन्होंने मुझसे जब पूछा तो वो सारे लिटरेचर के क्वेश्चन थे। मुझे याद है राजा गीत पर डिस्कशन हुई थी, फिर हासिल घाट पे हुई थी, फिर मेटामॉर्फोसिस पे हुई थी, काफ्का की कुछ चीज़ों पे, तो वो उन्होंने उसी वक्त मुझे सेलेक्ट कर लिया, और फिर वो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी उस डिप्लोमा में कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली हायर किया एज एसोसिएट प्रोड्यूसर जी। तो वो वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। फिल्म मेकिंग जो थी, अच्छा वहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री, न्यूज़ और मीडिया से रिलेटेड था, लेकिन हमेशा से ये मैं अपने यहाँ स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जब आप एक बड़े कैनवस पे पेंट कर लेते हैं, फिर छोटे कैनवस पे पेंट करना इजी होता है। तो हमारी ट्रेनिंग सारी फिल्म की हुई, पीपल फ्रॉम बीबीसी एंड डिस्कवरी जिन्होंने आके हमें पढ़ाया वो भी सारे फिल्म मेकर्स थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स थे मेनली, तो वहाँ से फिर फिल्म मेकिंग का हुआ। और जियो के जितने 13-14 साल थे उसमें रऊफ साहब के अंडर हम लोगों ने यानी मैं ये कहता हूँ कि हमारे वो बॉस थे जिसमें वो हमारे लीडर थे कि वो हमें ठीक है, हमने प्रोग्राम तो प्रोड्यूस करना होता था और स्केड्यूल भी है और प्रेशर्स भी है, लेकिन हमारे साथ उनकी हर वीक 2 वीक्स में एक बुक जरूर पढ़ के हमने डिस्कस करनी होती अच्छा। थी और 2-1 फिल्में थी जो हम देखते थे, उन्होंने डिपार्टमेंट को इस तरह से किया हुआ था। तो फिर वहां से फिल्म मेकिंग का इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट्स मिले ऐसे। मतलब मेरा जो पहला मैंने प्रोड्यूस किया प्रोग्राम, दैट वाज अ टॉक शो सिनेमेनिया के नाम से था, एंड वी यूज्ड टू इन्वाइट डिफरेंट सेलिब्रिटीज एंड डिस्कस देयर फेवरेट फिल्म। एतजाज हसन साहब आ रहे हैं और उनसे उनकी फेवरेट फिल्म डिस्कस हो रही है, इसी तरह से सलमान भट्ट आ रहे हैं, अली जफर आ रहे हैं इनसे। अब जब वो कोई 87 एपिसोड्स मैंने प्रोड्यूस, अब वो प्रोड्यूस करना, फिर उसकी फेवरेट फिल्म अगर आपने डिस्कस करनी है तो उससे देखने उससे पहले देखनी है, फिर उसके स्पेशल या कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चन गाइड बना के देनी होती थी मुझे मेरे अपनी होस्ट को, तो वो फिल्म से फिर बहुत ज्यादा जो ना मैं अब देखता हूं तो मैं फिल्म एनालिसिस किया करता था इन अ वे। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने फिर अपनी डिग्रीज की, यानी मैंने फिल्म एमएस फिल्म एंड टेलीविजन किया, बीएनयू से किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एक एमएस किया और फिर मैस कम्युनिकेशन में एक डिग्री की, तो मेरे पास एमएस की 3 डिग्री हैं। एट द मोमेंट आई एम डूइंग माय पीएचडी और वो भी ज्यादा मेरा डॉक्यूमेंट्री पे फोकस है। तो जियो में रहते हुए फिर बड़ा इजी था मेरे लिए, वहां पे फिर डॉक्यू ड्रामास भी किए, कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी की, मेनली डॉक्यूमेंट्री की, क्योंकि मुझे रियलिटी को एक्सप्लोर करना, सोशल सोशोलॉजिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करना, मैंने फिर देखा कि मेरा एप्टीट्यूड कुछ उस तरफ जा रहा है, तो फिर मैंने जियो में जियोमेंट्री के नाम से एक आती थी सीरीज आती थी उसको हेड किया लाहौर से, इस तरह से।
5: तो सर जब साइंसेस से आर्ट्स में आपने एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता आपने लिया, तो उस टाइम पे आपको ये फील नहीं हुआ कि मैं अपने साथ या अपने कैरियर को, जिस टाइम पे लोग फोकस कर रहे होते हैं कि अब हमने डिग्री कर ली इंजीनियरिंग की और अब इसी में हमने मजीद एक्सेल करना है और आगे जाना है, आपने उस टाइम पे आर्ट्स में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद अब आप जैसे बता रहे हैं कि आपने एमफिल की 3 डिग्रीज की हैं, लाइफ को मैनेज करना, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना, इसके साथ ये सब चीजें मुश्किल नहीं होती? ऐसे नहीं फील होता कि मैं कैसे करूंगा? कभी ये फीलिंग नहीं आई थी आपको?
6: अच्छा मरियम, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट में किया करता था। इवन मैंने अपनी फिल्म मेकिंग में भी, डॉक्यूमेंट्री में भी वो एक्सपेरिमेंट किए जो शायद जियो पे पहले नहीं हुए थे। सो एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने बात की कि किस तरह से मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लर्निंग है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो जिस तरह से सोशियोलॉजी ने मुझे डॉक्यूमेंट्री में हेल्प किया, वो शायद सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होके मैं नहीं कर सकता था। जो रिसर्च का पार्ट है, जो सोसाइटी का पार्ट है, ये सारी की सारी वो चीजें थी जो मुझे सोशियोलॉजी ने बहुत हेल्प की। और मुझे लगता है कि सोशियोलॉजिस्ट आर जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जो सोसाइटी की पल्स अपने हाथ में रखते हैं. तो इसलिए मुझे ये कॉम्बिनेशंस करने पड़े. फिल्म मेकिंग आपको टेक्निक ज़्यादा करवा रही होती है. लिटरेचर मेरा पहले बैकग्राउंड स्ट्रांग था. जो रिसर्च है और जो फील्ड रिसर्च है और सोसाइटी को देखना और कैरेक्टर की डेवलपमेंट और कोई कैरेक्टर क्यों ऐसे करता है उसके लिए सोसाइटी पढ़ना बड़ा ज़रूरी था. तो मुझे वो कैरेक्टराइजेशन में, स्टोरी बिल्डिंग में, उसके कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी रेजोल्यूशन में, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं. जहाँ तक इंजीनियरिंग से शिफ्ट करने का ताल्लुक था तो वो थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को भी इस तरह से बात करता हूँ क्लास में हमेशा से कि थोड़ा सा आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा अपने डिसीजन मेकिंग के हवाले से. मुझे हमेशा याद आती है सईद अजमल की एग्जांपल. ही वाज अ वेरी गुड बॉलर और वो स्पिनर था और उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी विकेटें ली. लेकिन घर वाले उसको कहते थे कि इसमें कोई करियर नहीं है तेरा. उसके बाद उनके वाले साहब नाराज भी हुए. तो लेकिन ये है कि उसने कहा मैंने क्रिकेट खेलनी है. तो आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हों और फिर टॉप पर रहने की कोशिश करें. कोशिश ही कीजिए. मैंने जियो के डिप्लोमा में भी मैं आई वॉज द टॉप वन डायरेक्टली हायर हुआ. उस वक्त जो है प्रोडक्शन एसोसिएट हायर होते थे. मैं एपी उस वक्त हायर हुआ. तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं. आप डिसीजन लें और फिर उसको ऑन करें. जब आप खुद के डिसीजन लेते हैं तो अगर तो वो इफ़ दे प्रूव टू बी राइट तो आप बहुत अच्छी चीज़ है. अगर नहीं टाइम प्रूव करता है कि वो कर लेते हैं तो आप लर्न कर लेते हैं. किसी के डिसीजन से वो ठीक भी हो जाए तो लर्निंग नहीं होती. वो ना भी हो क्योंकि आप उन पर डाल देते हैं. सो मुझे लगता है कि अपने डिसीजन जो हैं वेल कैलकुलेटेड होने चाहिए लेकिन लेने आपको खुद चाहिए क्योंकि आपकी फिर लर्निंग हो. और एक जिंदगी है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कीजिए ताकि आप फिर ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सका.
5: अफसोस ना रह जाए. हम यहीं से गुफ्तगु के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. अभी चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब. मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और आप सुन रहे हैं फैकल्टी आर प्रोग्राम.

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और हम ब्रेक पे जाने से पहले अपने खास मेहमान सर कामरान बट से बहुत मजे की गुफ्तगू कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने लिटरेचर साइंसेस से आर्ट्स में शिफ्ट होकर लिटरेचर पढ़ा हुआ था और फिर सोशियोलॉजी, और इन सब की हेल्प से उन्होंने फिल्म मेकिंग को एक नए एंगल से देखना स्टार्ट किया और सोशल इशूज को हाईलाइट किया। सर, मैं इसी से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो अब हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे हमारी अब नई डिग्री एक स्टार्ट हुई है फिल्म टीवी एंड डिजिटल एज, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं जब स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है कि उनको लिटरेचर की नो हाउ हो, उनको सोशल इश्यूज का आइडिया हो, उन्होंने सोशियोलॉजी को अच्छे से देखा हो? क्या इसके बगैर भी फिल्म मेकिंग की जा सकती है, या इसकी ग्रिप के साथ अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे एज अ एक पूरे प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को लेके आते हैं?
2: देखिए, इफ वी टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग, तो इसमें जितने फिलोसोफर्स और जितने फिल्म मेकर्स के हवाले से अगर हम देखें, तो उनमें से बहुत से लोगों का ये कहना है कि इट्स अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। आप रियलिटी में जो कुछ देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। वो ठीक है, कुछ आप बियॉन्ड रियलिटी और फैंटेसी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो पोर्शन बहुत कम है। ज्यादातर फिल्म मेकिंग इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। तो इफ इट इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी, तो वो रियलिटी को पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली या बहुत छोटे से सर्कल में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। लिहाजा सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद ये है कि हम बहुत ऑब्जर्व करते हुए भी बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप एक स्टोरी पढ़ लें, तो आप उस स्टोरी में ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि आपको इंस्पायर भी करेगा और आपको फिर फर्दर सोचने पे मजबूर भी करेगा। तो लिटरेचर करता क्या है? लिटरेचर, अब जितने भी फिल्म स्कूल्स हैं इंटरनेशनल या जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे लिटरेचर बेस जो है वो लिटरेचर से ही बनाई जाती है। अब देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, हुआ ये कि टेक्निक बहुत स्ट्रांग हो गई, हमारे पास बहुत स्ट्रांग कैमराज आ गए, एडिटिंग आ गई, कलर ग्रेडिंग की बहुत टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे साउंड को रिकॉर्ड करना और साउंड को प्रोड्यूस करना आ गया। लेकिन जो स्टोरी है वो वहीं की वहीं खड़ी है कि स्टोरी, क्योंकि उस तरह से सिखाई नहीं जा सकती, वो आपके अंदर से आपकी ऑब्जर्वेशन से, वो ठीक है लिखने का क्राफ्ट आपको कोई सिखा देगा, हाँ आप एक्सपोज हो बहुत सी स्टोरी से तो आपका क्राफ्ट बेहतर होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बेस खड़ी है कंटेंट की या कहानी की, वो आपको लिटरेचर से मिलनी है। मसलन अगर आप देख लें इंटरनेशनल जितने, आप क्रिस्टोफर नॉलन को देख लें, मॉडर्न फिल्म मेकर है, या हम अल्फ्रेड हिचकॉक को देख लें, वो 60s में उसके साइको इज अ वेरी फेमस फिल्म ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक। तो ये सारे वो लोग थे जो ऑटियस थे। ऑटियस वो लोग हैं जो अपना स्क्रिप्ट भी खुद देख, कहानी का सिलेक्शन, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना पूरा इन्वॉल्व होना, और यानी उसका प्रोसेस में खुद से इन्वॉल्व होते हैं, किस नॉवल पे फिल्म करनी है और क्यों करनी है, कौन सी कहानी ऐसी है अगर उन्हें लिटरेचर से उठाना है तो उस पर फिल्म बन सकती है, कौन सी ऐसी कहानी है जिसको उन्होंने चेंज करना है, बेसिक आइडिया वही लेना है फिर उसको चेंज करना है। सो लिटरेचर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। मतलब मुझे आप सब कॉन्टिनेंट में नाम लें तो सत्यजीत रे का नाम आता है। अब सत्यजीत रे वो हैं जो खुद शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। उनकी एक फिल्म हमेशा से मैं रिकमेंड भी करता हूँ, शॉर्ट फिल्म है अनुकुल, अनुकुल रोबोट्स पे है कि किस तरह से रोबोट, और वो उन्होंने 70s में लिखी थी और अब उसको डायरेक्ट किया है कुछ नए यानी फिल्म मेकर्स ने। तो एक राइटर आने वाले दौर के लिए भी उस तरह से उसको लिख रहा होता है, और बड़ा राइटर होता भी वही है कि जिसकी कहानी कभी भी टाइम बाउंडेड नहीं होती। मंटो को आप देख लें, मंटो ने कब कहानियां लिखी वो आज की सोसाइटी पे भी। तो बड़ा राइटर ऐसा एक राइटर होता है जिसका कभी भी जो लाइन है मरती नहीं है, उसको हम इस तरह से बोला करते थे। सो लिटरेचर इसलिए आपको सोचने पे मजबूर करता है, बहुत से किरदारों से मिलवाता है, खुद किस तरह से कहानी ने चलना है और किस तरह से आपने अपने व्यूअर को हुक करना है, क्योंकि हुक करना व्यूअर को काम है आपका, वो चाहे आप स्क्रीन पे कर रहे हैं चाहे आप स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जाने से पहले अगर कहानी बहुत स्ट्रांग होगी तभी उसमें पॉसिबल है कि वो आप फिर हुक कर सकेंगे। तो इसलिए लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को, हम लोगों ने भी जो डिग्री भी स्टार्ट की उसमें शॉर्ट स्टोरी की पूरी एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए कि पहले कहानी पढ़ें देखें और फिर स्क्रिप्ट की तरफ जाएं। स्क्रिप्ट राइटिंग है वो टेक्निक है, वो आपको सॉफ्टवेयर भी हेल्प कर रहे होते हैं, फेड इन भी आप कर सकते हैं, सैंटेक्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपको खुद सोचना है। चैट जीपीटी को आप देते हैं, वो आपको आइडियाज दे रहा होता है, लेकिन वो ऐसे आइडियाज होते हैं जो फिर वो बहुत सौ को दे रहा होता है। तो इसलिए मसला ये है कि आपको जो बेसिक आइडिया है वो आप सोसाइटी से एक्सप्लोर करें, उसमें जाके ऑब्जर्व करें, कैरेक्टर रीड करें, एक कैरेक्टर को रीड करें और फिर देखें कि इस ये कहाँ से आया और इसने कहाँ जाना है, वहीं से कहानी बनना शुरू हो जाएगी।
1: सर जैसे अभी आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे तो इसी से आगे सवाल को मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चैट जीपीटी और डिफरेंट एआई टूल्स जो हैं इनकी वजह से फिल्म मेकिंग में बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं इनसे। मैं देखती हूँ कि हमारे पास भी जो प्रोजेक्ट्स बच्चे लेकर आते हैं वो नॉर्मली जो क्लास प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर रहे होते हैं। सो आपको नहीं लगता कि एज ए फिल्म मेकर और एज ए टीचर ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है उनको जज करना या उनको बताना कि चैट जीपीटी के अलावा या डिफरेंट एआई टूल्स के अलावा वो किस तरह सोच सकते हैं और अपनी सोच के प्रोसेस में सोशल इश्यूज को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं?
2: अच्छा मैम, एक तो ये है कि वो कैसे पता करना कि वो यूज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम खुद अगर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहेंगे टीचर्स तो हमें पता तो चल जाता है, जैसे आपको पता चल गया बिकॉज यू आर कनेक्टेड, सिंस आई एम ऑल्सो यूजिंग द टूल्स तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या है और कैसे नहीं है। और ये टेक्नोलॉजीज ये आती रहेंगी, जब कैलकुलेटर आया था तो तब भी बड़ी लोगों ने बहस की थी कि कैलकुलेटर जो हमारी बेसिक कैलकुलेशन को ख़त्म कर देगा और हम हर वक्त कहीं पे भी जाएंगे तो साथ कैलकुलेटर लेके जाएंगे कि अगर 2+5 है तो कितने बने, तो वो नई टेक्नोलॉजी पे ये बहस होती है। ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है। अब मसला ये है कि आप प्रॉम्प्ट देते हैं, चैट जीपीटी आपको आंसर कर देता है, अब अगर उसे आप पढ़ ही नहीं रहे और कॉपी पेस्ट करके टीचर को आपने सबमिट करवा दिया तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। आप हेल्प लें, आप डिपेंड ना हो जाएं पूरे के पूरे, आप कहानी का आइडिया लें ठीक है, लेकिन वो आइडिया कितना आपकी सोसाइटी पे कनेक्टेड है और कितना आप खुद इंस्पायर हो रहे हैं उससे और कितने उसमें विजुअल एलिमेंट हैं, ये कुछ डिसीजंस अभी भी ह्यूमन के हाथ में ही रहेंगे। और फिर ये है कि वो आपको लाइट के प्लान्स भी बना, फ्लोर प्लान बना के देता है चैट जीपीटी, लेकिन उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो 100% उस तरह से नहीं हो रहा होता। सेम इज द केस उसमें कहानी के हवाले से भी लिमिटेशन होती है, मेरा मतलब है कि वो कल्चरल जो लिमिट्स हैं वो समटाइम्स उसको समझ नहीं आती हैं। ये बिल्कुल इस तरह से ही आप इंडियन फिल्म में देखें तो वो सारे पाकिस्तानी अगर उन्होंने दिखाना है तो अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं ठीक है, उसके बाद वो शेरवानियां पहन के जा रहे होते हैं, ईद दिखाते हैं तो झंडियां लगी होती हैं। अब ये एरर चैट जीपीटी भी करता है इस किस्म के, तो आपको इन एरर्स को फिल्म मेकिंग में कंट्रोल करके रखना है। हाँ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, मेरा मतलब है अगर आप फोटोशॉप में एआई को यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल आप लिख देते हैं कि मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए और वो कर देता है, लेकिन आपने कौन सा बैकग्राउंड करवाना है वो अगेन आपका जो ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी ट्रेनिंग, आपकी अपनी लर्निंग उस पे आएगा। तो हेल्प जरूर है, बहुत अच्छी हेल्प है, होनी चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग की दफा आपको क्रिटिकली उसको देखना है।
1: और सर जैसे आपने अपने करियर का आगाज किया उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और आपके बच्चों के पास हर तरह से एडवांसमेंट भी है, तो क्या आपको एक डिफरेंस नजर आता है? आपने लिटरेचर भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा और अब के बच्चे जो होते हैं उनको बस होता है कि ये बस एक आइडिया और इसको हमने एक शक्ल देनी है और ये बेस्ट होगा, तो आप उन बच्चों को किस तरह से एडवाइस करेंगे कि वो फिल्म मेकिंग में आते हैं और स्पेसिफिकली ये स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं तो अपने आप को किस तरह से फुली तौर पे प्रिपेयर करें कि हाँ ये चीज़ ऐसे और हमने इसको यहाँ से लेके चलना है और इसी तरह से स्टार्ट करना है?
2: देखिए, आर्ट फॉर्म है ना फिल्म भी, और उसमें आर्ट फॉर्म क्या होती है जिसमें आपका अपना एक्सप्रेशन नज़र आता है, तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो एडिटिंग सिस्टम इतने स्लो थे, मैंने हम लोग एक इफेक्ट लगाते थे, एक डिजॉल्व लगाते थे, फिर वेट करते थे कि डिजॉल्व जो है वो लग जाए, तो टाइम जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा एफिशेंट हो गए अब और क्वालिटी वाइज भी हो गए। हम जो है वो टेप्स वाले कैमरा से करियर स्टार्ट किया, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई डिजिटल में, कार्ड्स आना शुरू हुए, तो वो टाइम वाइज मैं देखता हूँ कि बड़ा अच्छा मैनेज हो सकता है। लेकिन जहां तक ये चीज है कि बच्चे किस तरह से उसको यानी बहुत जल्दी करते हैं, इसमें हमेशा से आप कुछ भी कर रहे हैं क्वेश्चन करें मरियम अपने आप से, अपने बारे में क्रिटिकल हो, ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपना कॉम्पिटिशन अपने साथ रखें जितने ज़्यादा। मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट्स जब लाते हैं अपना कोई भी आइडिया लाते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चंस किया जाता हूँ कि यार इस बारे में सोचा, ये करेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, ये करेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इस करेक्टर के पास ये करने के लिए था तो उसने क्यों नहीं किया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन, सीड्स आपने अपनी कहानी में कहीं ऐसे डाले हुए हैं जो आगे जाके पौधे और ट्री बन रहे हैं, रीजंस बन रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो उस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन करना है अपने आप से और अपने बारे में क्रिटिकल होना है। जितने ज़्यादा आप क्रिटिकली अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे, जितना खुद से क्वेश्चन करेंगे, उतने ही ज़्यादा फिर उसमें चीज़ें इम्प्रूव हो रही होंगी।
1: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फैकल्टी, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन।

0: जरा इसको भी देखना पड़ेगा और फिल्म में क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। आप इंस्पिरेशंस लेते हैं, आप इंस्पिरेशंस लेके चीजें कर रहे होते हैं, और प्लेजरिज्म मेरा मतलब या तो आप डिटो कॉपी कर दें, आप देखें फ्रेम्स देखें और उसको उसी तरह से कर दें, या आप पकड़ के कहानी, अब मंटो की कहानियों पे कितने लोगों ने, मतलब सौगंधी पे बहुत सी फिल्म्स बनी है, खोल दो पे बहुत सी फिल्म्स बनी है, काली शलवार पे बहुत सी फिल्म्स बनी है। अब वो हर फिल्म की कहानी तो सेम है, ठीक हो गया, हर फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम भी सेम है, ठीक है, वो एक बाप है जो जैनब उसकी बेटी है और उसको ढूंढ रहा था, बात है तो ठीक है, वही है सारी की सारी जो मंटो के अफसाने हैं, लेकिन हर एक ने अपनी डिफरेंट फिल्म बनाई है। तो अगर आपका डायरेक्टर कोई एक स्टोरी ले रहा है, चाहे वो बनी हुई है पहले, और उसको अपने अंदाज से पेश कर रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, एक चीज। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री में अगर कोई किरदार है जो बहुत, मेरा मतलब है कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक कसूर में एक सर्कस लगती है और उसके मौत के कुएं में एक लड़की जो है वो बाइक चलाती है क्योंकि उसके वालिद की डेथ हो गई है, वो चलाया करते थे, अब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो मौत के कुएं, अब ये कैरेक्टर अगर मैंने किया है और मैंने अपने अंदाज से किया है और आपको भी वो इंस्पायर कर रहा है करेक्टर, आप भी करना चाहती हैं तो आप जरूर करें। या तो उस करेक्टर को मैंने ओन कर लिया हो ना, यानी ये गाओगे ये मेरा करेक्टर है और ये किसी और से बात नहीं करेगा, मैंने उसके कॉपी राइट ले लिया हूँ, अदरवाइज कहानियां सुनाने के अंदाज डिफरेंट है,
1: यानी नरेशन डिफरेंट।
0: जी जी जी बिल्कुल, मैं अगर आपका फुटेज ले लूँ ना, मैंने आपने जो शूट किया था वो ले लूँ और उसको एडिट करना शुरू कर दूँ तो वो प्लेजरिज्म होगा। कैरेक्टर्स फैले हुए हैं उस पर, बहुत से लोग कर सकते हैं और करने भी चाहिए। मैं मतलब है कि ईदी साहब हो गए या कायदा साहब है, माई टू मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो वो अगर उस पे उन पे काम हो रहा है तो बहुत से लोग कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। हाँ, ये ना करूं कि मैं आपकी फिल्म में अपना नाम लिख के दे दूं, वो गलत है, अदरवाइज इंस्पिरेशन लेके काम करना वो प्लेजरिज्म उस तरह से नहीं।
1: ऐसा ही है। और सर, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया, जब बच्चे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं तो इसमें क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत डिफरेंट हैं? जी जी, अच्छा,
0: इसमें इसमें हमने किया क्या, हमने उसी तरह से बेस पहले लिटरेचर से बनाई, शॉर्ट फिल्म शॉर्ट स्टोरी से बनाई और फिर हम उस पर बिल्ड करते गए, उसमें फिर मॉडर्न जो टेक्निक है, अब तो मरियम ये है कि सब कुछ जो है वो डिजिटली, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, वो प्रोड्यूस भी डिजिटल टेक्निक के थ्रू हो रहा है और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी, मैं OTT प्लेटफॉर्म है, अब ये फिल्म ये नहीं है कि मैंने बनाई और मैं जाके किसी भी चैनल को दूँ कि प्लीज़ मेरी फिल्म खरीद लें, अब तो ये है कि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर देते हैं और खुद डायरेक्टली अपने व्यूअर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस एनवायरनमेंट में फिर स्टूडेंट को इसी तरह से इक्विप करना है जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है यहाँ पे जिसमें जितने भी रिक्वायर्ड हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आपका Adobe प्रेमियर हो गया, आपके फोटोशॉप हो गई, आफ्टर इफेक्ट हो गया, माया हो गया, 3D मैक्स हो गया, ये सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी लैब पूरी कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो है अपना, मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स को विजिट किया, मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज को विजिट किया है, जिस तरह से UCP में ख्याल रखा जाता है स्टूडेंट्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा कहीं पे उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह से टीचर्स पे भी प्रेशर्स होते हैं कि हमने किस तरह से अपना भी 100% देना है और स्टूडेंट्स भी उसका 100% आउट करना, जो कि बहुत अच्छी चीज है, हमें भी मजा आता है, वी एंजॉय सच एनवायरमेंट, तो वो चीज यूसीपी में इसको एज देती है। इसका जो स्टूडियो है वो जहाँ पे आप शो प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हैं वो ऑन एयर हो सकता है आपके किसी भी चैनल पे, बच्चे उस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है, फिर ये सारा का सारा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इन सारी एक्टिविटीज में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए हमारी जो फिल्म की डिग्री या डिजिटल की डिग्री है वो बाकी सारी जगहों से डिफरेंट है। और फिर ये है कि जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे स्टूडेंट को मिल रहा होता है वो ये है कि वी थ्रो देम इन डीप हॉट वाटर्स, ठीक है, सामने कैमरे के बिठा देंगे उन्हें और उन्हें वहां से उनका फिर आउटपुट 100% कोशिश करेंगे वो निकालें, तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और कॉन्फिडेंस ही है जो देना है। दूसरा, हम क्वेश्चन का कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने रखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन करें हमसे, क्योंकि क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, जो आपको नया इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके वहां से उस हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो आप लर्न करते जाएंगे।
1: ऐसा ही है। आज की जो फैकल्टी आर्ट था उसमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला जो इससे पहले नहीं पता था।
0: सो नाइस ऑफ यू मैम, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: एक्चुअली मेरे फैकल्टी आर्ट का मकसद ये है कि हम बैठे और डिस्कशन करें रिगार्डिंग द फैकल्टी, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ट्रेंड्स के बारे में, और उनको गाइडलाइंस दें एज अ मेंटोर जितना हम दे सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम के जरिए मैंने

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं ऑक्सीजन मुहैया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं परिंदों के लिए ठिकाना है सैलाब में रुकावट बनते हैं ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए दिस इज इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब ये अभी हम गुफ्तगू का आप फरमा रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया कि नहीं किया, या सहाबा कराम ने क्या, जिस पर हम तर्क कर रहे थे कि जारी किया उन्होंने उम्मत में, अगर वो दीन है तो डॉक्टर साहब ये जो अगर मैं ये इस पर तबसरा करूँ आप जरूर उस पर फरमाइएगा कि इसका मतलब ये कि हजूर पाक सल्लम या सहाबा कराम गालबन ऐसे वजीफों नहीं करते थे, वजह यह कि हजूर पाक सल्लम को जब मुश्किल पेश आती थी या कोई प्रॉब्लम फेस आती थी तो ही यूज टू डू इज वजू एंड ऑफर टू नफल रकत, और अल्लाह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से राबता रख के उनसे दुआ करते थे। तो क्या ये वजीफे का हम इसका जो एंटी थीसिस या तोड़ इस तरह पेश कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
1: देखिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि वजीफों को निगेट करने की क्या जरूरत है, आप उसकी सही जगह बता दें और लोगों को बताएं ये दीन नहीं है। आपने जो बयान की बात बिल्कुल सही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते थे, कुरान मजीद में दुआएं मौजूद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये स्टेटमेंट इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही है कि जो मुझे शिफा बख्शता है, ये बड़ी जबरदस्त दुआ है।
0: डॉक्टर साहब ये इसका वजीफे से तो नहीं ताल्लुक,
1: कोई ताल्लुक, कोई ताल्लुक,
0: ये तो अल्लाह ही ऑब्वियसली सब कुछ करता है,
1: ऐसा ही है। तो मैं ही गुजारिश कर रहा हूँ ये तो दीन है,
0: ये दीन।
1: अगर कोई शख्स पूरे शऊर के साथ इस तरह दुआ करता है और अपने ऊपर पढ़ के फूंक भी देता है, ये बिल्कुल दीन है। अगरचे कि आप कह सकते हैं कि इस तरह हुजूर ने नहीं किया, लेकिन हुजूर ने जो हमको कुरान दिया है, कुरान की ये आयत है, उस आयत को हम समझ के अपनी बीमारी की हालत में उसको पढ़ रहे हैं, तो ये तो असल में उस कुरान की अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन है, जो जाहिर दीन इसी को कहते हैं ना। लेकिन आपने एक चीज को एक खास नंबर दे दिया और वो एक साहब ने दिया जो अल्लाह के पैगंबर नहीं है, और वो लोगों को कह रहे हैं कि उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी मुश्किल ठीक हो जाएगी। लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि उसका मतलब क्या है। तो अब ये बस वही है जिसको आप वजीफा कहते हैं और उस पर
0: दीन नहीं है। ये डिफ्रेंसिएशन बहुत जरूरी है,
1: जरूरी है,
0: आप सही फरमा रहे हैं। कम से कम इतना हम डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये एक एक्सपीरियंस है किसी इंसान का, आप कर लें। इट हैज गॉट नथिंग टू विद द रिलीजन।
1: इसका ये भी नतीजा निकलता है कि वो जो बाज लोग होते हैं वो लंबी सी तस्बीह लेके वो सुबह शाम कुछ कर रहे होते हैं, तो ये उनको बताना चाहिए कि अगर आप दीन की कैटेगरी में अपने इस अमल को शामिल करना चाहते हैं तो फिर खुदारा समझें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कोशिश करें कि पूरे शऊर के साथ पढ़ें, वरना कहीं ये ना हो कि वहां जाके पता लगे कि ये तो आप वजीफे करके आए, इसका दीन से क्या ताल्लुक है।
0: बड़ी बड़ी दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और पहलू वजीफा के साथ जो हमारे माशरे में बहुत राइज है और सोशल मीडिया से भी लिंक्ड है। देखिए सोशल मीडिया में डॉक्टर साहब ऑब्वियसली टीवी भी, केबल टीवी भी आ जाता है, हम सिर्फ यूट्यूब नहीं कह रहे हैं, उसमें केबल टीवी और सब चैनल बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब, बल्कि बहुत ही ज्यादा ये रिवाज पड़ गया इस्तखारा का कि टीवी चैनल्स पे, अगर टीवी चैनल्स पे आ जाएं, लाइव आ रहा होता है प्रोग्राम, वहां एक मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा होते हैं और लाइव कॉल्स आ रही होती हैं और लोग खूब कॉलें कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब कि जी मेरी मसलन बेटी की शादी होनी है या मेरे बेटे कौन है या ये, तो उनके बारे में इस्तखारा कर दें। तो देर एंड देन दैट मुफ्ती साहब डज समथिंग एंड ही रिप्लाइज कि जी हाँ जी आप ये है, तो इसका जवाब देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये व्हाट इज दिस प्रैक्टिस गोइंग ऑन?
1: देखिए अगेन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इसमें यू नो आम तौर पर मैंने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी हम इस्तखारा करवाते हैं और हमें तजर्बे से मालूम होता है कि जवाब बड़ा ठीक आता है, यानी उन्होंने कहा कि रिश्ता कर दो रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाता है, उनका रिश्ता ना करो और बाद में पता लगता है कि नहीं करना चाहिए था। मैं इसको छोड़ रहा हूं बिला तबसरा, ये भी कोई दुनियावी चीज है, मैं वजीफे की तरह की इसको चीज समझता हूँ, लोगों का तजर्बा है, इसलिए कि ये दीन नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्तखारे की दुआ बताई है आमिर यजदानी साहब, वो मुझे प्रॉब्लम है तो मेरे लिए है कि मैं उसको पढ़ूं, आपको अगर कोई फैसला करना है तो आपके लिए है, मैं आपके लिए नहीं कर सकता, आप मेरे लिए नहीं कर सकते, उसके अल्फाज ही ऐसे हैं।
0: लेकिन डॉक्टर साहब मतलब हम अपनी अम्मी से, अपनी नानी से, दादी से दुआ करवाते हैं ना, नेक लोग समझ के, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं या हमारे हैं, हम किसी बुजुर्ग को भी कह सकते हैं कि हम मिल के सर मोहतरम मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह खैर, तो इसमें यह पहलू नुमाया है। एक्चुअली वो समझते हैं ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये ऑब्वियसली अल्लाह वाले हैं, मौलाना साहब हैं, तो हम इनसे बात करेंगे तो ये एक हमारे रेफरेंस से कोई ना कोई अच्छी बात बता देंगे।
1: बिल्कुल ठीक है। देखिए बात ये है कि इस

0: में कोई मुझे एतराज करने का हक नहीं है, लेकिन आप उसको सही कैटेगरी में डालें। यानी अगर आप जकात दे रहे हैं तो उसको नमाज ना कहें, रोजा रख रहे हैं तो उसको जकात ना कहें। इस्तखारा जिसको कहते हैं, वो जो फर्द किसी मसले से दो चार है वो खुद करता है। आपने अगर किसी बुजुर्ग से कुछ करवाना है तो दुआ करवाएं, इस्तखारा ना करवाएं।
1: हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। साइमिन हमारे साथ रहेगा, ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापसी पे दोबारा वी स्टार्ट फ्रॉम हियर इंशाल्लाह।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
3: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: 96.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैम, लॉ से रिलेटेड थोड़ा सवाल है, जो सिटीजन्स हमारे सिविलियंस हैं। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मोस्टली जितने भी सिविलियंस हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, और हम काफ़ी दफ़ा ये भी देखते हैं कि वेरी प्रोलॉन्ग ट्रायल्स भी चल रहे होते हैं। तो मैम, इसकी वजह क्या है कि अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग अपने राइट्स के बारे में एक तो एजुकेटेड नहीं है, दूसरा ये मैम इसकी क्या वजह कि अक्सर केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं? क्योंकि हम देखते होते हैं, हम इवन कि अपनी फैमिलीज में भी देखते होते हैं कि बहुत अरसे से कुछ केसेस आगे चलते जा रहे हैं, कोई उन पर स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं आता।
2: हाँ जी, उसमें दो तीन बातें। एक तो बात हमने पहले की है और एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं उसको दोबारा करूँगी कि लोगों को पता इसलिए नहीं है कि लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। जैसे मैंने आपको कहा है कि ना स्कूल लेवल पे ना कॉलेज लेवल के ऊपर लीगल एजुकेशन कहीं नहीं है, तो जब लीगल एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों को अपने राइट्स का कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब राइट्स जो हैं आपको जो मिलते हैं और जिनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्ट, वो आपके सारे के सारे लीगल लीगली डिक्लेयर्ड राइट्स हैं। तो वो जब तक आपको बताए नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जाहिर है कि nobody knows their right। और मैं आपको बताऊँ इसके साथ जुल्म क्या है। इसके साथ जुल्म ये है कि हमें जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, कि अगर आपको लॉ का नहीं पता तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर मी। ये जाती है कि आप उनको बताते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, और फिर एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि उनको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके पहले पार्ट का जवाब है। दूसरा जो आपने कहा प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स हैं, तो यस आई एग्री, ख़ास तौर पे जो सिविल ट्रायल्स हैं, इवन क्रिमिनल भी हमारे पास बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज हैं सिविल और क्रिमिनल ट्रायल्स की, जो कि बहुत प्रोलॉन्ग चलते हैं। दिस इज़ ड्यू टू जो हमारे बहुत पुराने प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी स्ट्रिंजेंट और इतनी उसके अंदर लूप होल्स निकाल लेते हैं जो कि उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इस वजह से वो बहुत प्रोलॉन्ग होते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ का आपके साथ जिक्र करूं कि अभी इसी वजह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत मतलब एट द हाईएस्ट लेवल दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन थिंग विच आर द ऑल्टरनेटिव्स टू द रेगुलर ट्रायल सिस्टम। बिकॉज रेगुलर ट्रायल सिस्टम, ऑल्दो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो वर्दी नहीं है, वो बिल्कुल वर्थ वाइल हैं और सारा कुछ है, लेकिन अलॉन्ग विद देम कुछ इस तरह के नए मेथड्स आने चाहिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जो कि थोड़ा सा क्विक और थोड़ा सा एक्सपेडाइट करें। तो दैट इज़ द रीज़न कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि आप मीडिएशन को और आर्बिट्रेशन को, जो कि ऑल्टरनेटिव्स हैं, और इसके साथ साथ मीडिएशन में बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, उन सबको अडॉप्ट करें, जिसको कि हम ADRs कहते हैं, कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं उनको भी आप यूज़ करें, सो दैट के आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो इंट्रोड्यूस कराई जाएं। एंड दिस इज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये बहुत बहुत लंबे ट्रायल्स चलते हैं।
1: मैम, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं, और ये भी कि हमें इतनी नॉलेज हमें प्रोवाइड की ही नहीं गई, तो हम पर्सनली एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने लीगल राइट्स के बारे में ज़्यादा जान सकें? यानी इफ़ आई एम अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, आई हैवन डन LLB और लॉ एनीथिंग, तो मैं अपने राइट्स के बारे में बेहतर जानने के लिए क्या वो चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और स्टेट को भी फ़ायदा हो?
2: बेटी, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर स्टूडेंट को साथ में लॉ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ तो सिर्फ जो लीगल एजुकेशन है दैट इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स, जिन्होंने कि आके प्रोफेशन में जाना। लेकिन आपकी इस बात से मुझे ये बात ज़रूर याद आती है कि इवन नॉन प्रैक्टिसिंग जो लोग हैं उनके लिए भी लीगल डिग्री होनी चाहिए। और ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात मैं एडवोकेट करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है सीट्स की, वो ठीक है, आप एक जैसे आपने बनाया है कि एक प्रोफेशनल ट्रैक रखते हैं, प्रोफेशनल ट्रैक में आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनका एग्ज़ाम लें, बार का एग्ज़ाम लें, सब कुछ करें, लेकिन ये कि अदरवाइज लीगल एजुकेशन को थोड़ा सा ओपन करें, ओपन फॉर एवरीवन, उसमें बेशक बहुत शॉर्ट कोर्सेज हो जाएं, डिप्लोमास हो जाएं वगैरह, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो कि नॉन डिग्री प्रोग्राम्स हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ कर सकती है, फैकल्टी ऑफ लॉ ज्वाइन कर सकती है हैंड्स विद अदर फैकल्टीज, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इवन सारे ही डिसिप्लिनस में जो आपके रेलेवेंट लॉज हैं ना, जो आपके प्रोफेशनली रेलेवेंट हैं, वो तो आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे मीडिया लॉज हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं आपके सवाल से ये समझी हूँ कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज प्रोफेशनल, यू आर टॉकिंग अबाउट योर बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट आर माय राइट्स एंड, तो उसके लिए जो फैकल्टी ऑफ लॉ है ये कर सकती है ओपन वेरियस प्रोग्राम्स जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के हैं फॉर जनरल पब्लिक, कि वो आएँ और उसको कस्टमाइज किया जा सकता है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें किसी की अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी, बिकॉज दैट इज़ अ नॉन डिग्री प्रोग्राम, तो इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, और प्लस जिस तरह की हम काविशें कर रहे हैं, हम अपना जो क्लिनिक करते हैं लॉ क्लिनिक, उसका भी जिक्र आ गया है बीच में, तो उसमें हम वेरियस जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो करते हैं, जैसे वेरियस जो हमारे स्पेशलाइज डेज होते हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें फिर हम बिल्कुल छोटे छोटे बड़ी आसान जुबान में बना के पैम्फलेट्स जैसे वो तकसीम करते हैं, सो दैट पीपल बी नोइंग के राइट्स क्या हैं, जैसे हमने जो अभी तक किया है उसमें ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे जो फैमिली लॉज हैं वो तो इमीडिएटली हम सबके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस हैं वो करते हैं, जिसमें कि हम फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी, सबको इनवाइट करते हैं, ओपन इनविटेशन होता है कि उनको जो ये मेजर एरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका निकाह नामा कैसे फिल होगा, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे फिल करना है, डावर कैसे फिक्स होता है, किस तरह करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है करने में यूज़ करनी चाहिए, तो इस तरह की छोटी ट्रेनिंग्स हम करते रहते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से. लेकिन आपका अभी भी जो सवाल है उसको मैं अप्रोप्रिएटली जवाब नहीं इसलिए दे पा रही हूँ, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो यूसीपी की कम्युनिटी के लिए, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट जनरली अबाउट द कम्युनिटी, तो उसके लिए यही है कि जो फैकल्टी है वो ज्वाइन करें हैंड्स विद अदर्स, ताकि ये डिसेमिनेट हो, जैसे हमारा आपने इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशंस का पूछा था, उसमें भी हम डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इस वक्त जो नेट में हैं एनजीओज़, वो फैमिली लॉज के ऊपर काम कर रही हैं, वो चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो रेफ्यूजी लॉज के ऊपर काम कर रही हैं, तो ये जो डिफरेंट एरियाज़ हैं इसमें फिर हम उनके साथ मिल के इसी तरह की छोटे छोटे मटीरियल्स डिवेलप करते हैं जो कि हम डिसेमिनेट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और वो हो रही हैं, और वो फैकल्टी ऑफ लॉ कोशिश कर रही है कि अपने क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से उसको पहुंचाए लोगों तक.
1: अच्छा मैम, आपसे एक सवाल होगा, हमने फैकल्टी ऑफ लॉ की बात की, हम थोड़ा सा आ जाते हैं एलएलएम वाली साइड पे, कि यूसीपी अभी एलएलएम भी प्रोवाइड करे, तो आप बता सकते हैं कि एलएलएम बेसिकली क्या प्रोसीजर चल रहा है और एलएलएम का क्या.
2: जी, हमारा जो एलएलएम प्रोग्राम है हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया है, लास्ट समर वाज आवर फर्स्ट बैच. हमारा जो स्लोगन है फॉर आवर एलएलएम प्रोग्राम, प्रीवियसली हिस्टोरिकली एलएलएम्स जो होते थे प्रोग्राम, यानी मास्टर ऑफ लॉ का, वो होता था रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम. हमने ये किया है कि वी विद द स्लोगन कि दिस इज़ एलएलएम फॉर इंडस्ट्री, हम जो कर रहे हैं वो एलएलएम ऑफर कर रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एरियाज़ हैं इन इंडस्ट्री, हम उसको इंट्रोड्यूस भी करवाएं और उनमें इन डेप्थ उनको लेके चलें. जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और इवन हमारे इर्द गिर्द भी मास्टर लेवल के ऊपर लॉ में अभी तक भी फोरेंसिक एविडेंस ऑफर नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं हो रहा. हमने वो इंट्रोड्यूस करवाया. साइबर सिक्योरिटी जो लॉज हैं उसके ऊपर मास्टर लेवल के ऊपर अभी कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया पाकिस्तान, हमने वो इंट्रोड्यूस करवाया. लीगल एजुकेशन में जो मास्टर प्रोग्राम है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया, सो दैट कि जितने बेहतर एजुकेशनिस्ट, क्योंकि जो भी लॉयर्स हैं दे आर नॉट नेसेसरली द एकेडमिक, तो जो एकेडमिक्स हैं उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है. तो लीगल एजुकेशन को एज मास्टर प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस हमने करवाया है. इसके अलावा हमने जो आपका पब्लिक पॉलिसी पब्लिक लॉ है उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है. सो आर एल एल एम इज़ फॉर इंडस्ट्री के जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लें वो एक्सपर्ट हों अपने एरियाज में और सीधा जाके वो इंडस्ट्री में उसको एक्सरसाइज करें. सो दैट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ आर एलएलएम प्रोग्राम, क्योंकि हम हर साल एक एम्प्लॉयर सर्वे भी करते हैं. दैट इज वो हमारी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की. तो जो एम्प्लॉयर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम आई कैन काउंट दोज स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु आर वर्किंग in government officers like in revenue departments and in bureaucracy, in judiciary and everywhere they are going, mashallah.
1: Listeners, हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद थीं डॉक्टर हादिया अवान. हमने उनसे जाना कि LLB लॉ की बेसिकली फील्ड में क्या इनोवेशंस चल रही हैं. हमें आज पता चला कि लॉ की डिग्री जो 5 years की होती थी वो 4 years की हो चुकी हुई है, और मूट रूम्स क्या होते हैं, मॉक ट्रायल्स क्या होते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में तशरीफ लाएं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव शो रहा. जी तो लिसनर्स, ये था आज का प्रोग्राम. आज हमने मैम से जाना कैसे UCP LLM और LLB की डिग्रीज प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक्सपीरियंशियल बेस्ड है, यानी कि इन डिग्रीज में सिर्फ थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी आपको पढ़ाया जाएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़.

बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फैलाने में जो किरदार औलिया कराम ने अंजाम दिया वो नाकाबिले फरामोश है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो कि 1103 हिजरी 1291 को पांडू के जिला कसूर के एक सैयद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत सखी मोहम्मद दरवेश कूच गिलानिया से तरके वतन करके पांडू आ गए और यहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपका सिलसिला नसब हजरत ख्वास पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हजरत सैयद अब्दुल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्द हकानी की इब्तदाई तालीम और तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत सैयद शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया हुई। बाद अज़ां आला तालीम के लिए अपने वक्त के इल्मी मरकज कसूर तशरीफ ले गए और मुर्शद कामिल हजरत शाह अनायत कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर रूहानी तालीम हासिल की। आप वहदतुल वजूद की मंजिलों को जानते थे, इसलिए हर शेख को मज़र खुदा जानते थे, मुर्शद के लिए इंसान का दर्जा रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम अशार और काफियों के जरिए दीन मतीन की खिदमत की और पूरी जिंदगी तबलीग हक में गुजार दी।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

जंग चणु चुप चुपी ता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे खेस साडे सर ते सूरज हाड़ दा साडे अंदर सीत सया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बा असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आ इक इकलू असा खुद नू भुले सावला सा हरदम जपया।

बनिया मस्त रुत बसंती मंदर माही जलवा आण विखाया बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस्त रोज अवल में जाम जे पीता वहदत मस्ती वाला बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिस दे मस्त ओ ना डरदा दोजक बोलो ना लालच जन्नत रखे

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

पर फन एंटरटेनमेंट न्यूज नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। WhatsApp पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में WhatsApp को रिपोर्ट करें।

वक्त ने पांव में डाली हैं कई जंजीरें, ख्वाब ही ख्वाब फकत और नहीं ताबीरें, यह चेहरे के हैं पानी पे बनी तस्वीरें, जलती बुझती हुई देखी हैं सदा तकदीरें, फिर भी काफी है अगर पाले हम थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों

पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।

0: अब्बा, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।